0: यार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो ईबीबी काय और रेडियो के कैन और रेडियो और रेडियो और रेडियो और रेडियो

0: और मैं पाचो
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचो
1: इटीनो और रेडियो